0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: खरो विषयमा सारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ
2: ग्लोबल आईएनई बैंक सबैका लागि बैंक
3: दिस होम इन्टरनेट।

0: होला नि।
1: हजुर, विगत 10 वर्षदेखि तपाईहरुकै सेवामा तत्पर सिद्धार्थ ग्रिल स्टील यूपीवीसी एन्ड एल्युमिनियम हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धादिङ अस्पतालको पछाडी प्रोप्राइटर बिरबहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 43 057 437।
2: रेडियो बिहानी समय संकेत, यति बेला साँझको 5 बज्यो।